0: यहाँ यो तो रही ये रंग का यहाँ का बता की बस नहीं गई आई फोन का कोरो रजित सोगों मा और अगेन ते में तो अधिस के बीस एडमिन निगों ये नंग न्यूमिन हुआ तो
1: सिर्फ ना वाता इरोम वो क्यों तो नरुन ना और क्या इकाई काकाओ वो रही वो कोंग ने में ताता अंतु के मन ना वो
2: ये नरियन में ताता पते ट्रकोमा के और अगेन ते में ता पते स्के बीस के ते में निगों पन ना और क्या कारण ने वे वे और सीटे पु वारुन ने वे या नरुन te bohani pai kete kunikai me ehyai rouna menin te oraki narun te taara te kaaviri pai ni me su awa amai siriki. Te mehan te tapu epe su su ke ravata ometa ehyai. Awai tau tauan te ometa ehyai rouna menin no oraki aikai. Me kwa korona pate trakoma eve men te nangu nkana esikura metan te ometa ehyai rouna menin te trakoma. Hoye menga gosana kon te menna.